झरना संगीत प्राली सगौर प्रस्तुत गर्दछ आफ्नै कला संस्कृति अनि मौलिकता भित्र अडिग अमृत आचार्य माइला गुरुको लोक सांगीतिक कोसेली मेरो कोछारा।